तो बुढ़ावी उधायून अरे रे समनानी एना एम बली बनिमसीवादे एना एन एन एन दौर का ना था दिदना यो एन एम ताले का तीने कुआरे बेका तीने ओ धाई तो न तुद आई थोई बा इका नाम मियाद बेत तो ना तिद एम बली बनियत दौर गाले बेन मीनान मत अमी ईस्ता ना को तुम्हारी तो तमे तक उन उदारी हसमिया ओ तक उदारी हसमिया यंगुल मल्ला हो क्या अको आन हो इफायद नो तक इशबिब नहीं इफायद नो मत अमदा राय का मत अमी बीफ उतक उतक आया इतक हो अको वाली एक समिया नाना आयो रे माँ हो नाना आयो रे माँ हो के दियो आन इमानी ए आनो भया नाना आय अन आंधा बरियोग ए फीद नहीं दियो आनी ए फीद ना नहीं दियो आ हाँ दियो इफायद है कुर्सी जुर्रियत और कुर्सी अभी कहित उधर इबदासियत गुआत इस यहाँ ना उन्होंने मिताल दुख ना दी दे उन्होंने हमट आए भी शिफ्ता बा उन वहाँ उधर अब काती बा उन उधर अब ए ए तीना का विंदी हुआ वावे हुआ उन ए तीना का हफ्ते फिर अहेतित का तो नेहरू का सकने अकरंदा उगरो ना थी सीना वन्ने देलहा बा को वन्ने तो उगरो यून ना तरहा बा बेत तो ना ती दायरे नी तक का अब के नी अको दौर इन्हें हंताया बा कह अने मई गिर में बीफी ही दाब दिफे सबोती भाई तक सगे मीनी काम कामी द एह तक तक थरो रितफ ए अनो तक सगे मीनी निशवे बोप उन्ने तगवाया तो रहना गरो यो ने ना थीस ने अको ओ तक ओम बाय होक निद निदियो मरी हो ने तर ए आई तो ने दुएलो नो या आय तकुन तुका होक निद आना सना ना ना तिप तुका ने दियो तुका तुका ओ त उन ओ काम होई तुका आया बक हीरे राया गरो कहा था गरो को मेढाने को शिवे बने दे निदियो भयान उन ओम यादवा दी ने दे इदियो एने बाद आया तने नो वो नो रबे वबरी गले भोई तुक ने इदियो रबे बाद आया तो आय तकू नि भले तेमसी वे बा बखंता बगदा बगदा ने दे इदियो बिहान हला सुनने ओ कामवा रबे वही तुक ने इदि तो तकत इदियो तो तकत तो की केने ने हरवे तो तकत तो ओ कामवा कसे ने हरे वही तो काय इदि नो उन ओदर मयुगद मरी ओ कामी दाय तंबर तुबरशम आहा तीकती अडट ईबर अडर निशवे उन्ने शिंगेरा अडर अकेरे ना वोई निफायत ओ तक उन्दा उनो मिया दे दियो ओ दोर मरियो नी रेरिया ने ना बुना नी वेते ता दे ओ तक उन्ने सूगा नहीं अफाय अंदा लो ओल उ तक एदी थमाडायों गे दी फरियाई इन हमाडायों उंगाल ताला हो ये नो फरसमन बडायन निश निफरो बडट निफरो रावी उगत तुकिया ताला हो ये नो अनी द तिंगा दो तुगा दी आइडाबन हिंदी सगी मीना ईफी अलगा नहीं तुन हिंदे अलवे मद्दा तुन हिंदे हा एलवे डाबे डाबे लेवे लेवे लेवे लेवे ना तो अगमो फहरा नहीं गाल दोर तो तकत तो उकामी हो गई थी दायन दायन हो तो तकत उन तक हे अना हो के अना हो कभी बनाओ कभी बदियो तो तकत उन तक अशोका न फिर काबे के नहीं उशते ने तिदियो तो तकत ती जिला उन्होंने अशोकन दे दे लाकिन बस गाना हो हर्री हुए आए दी तो तक इसोस खियो इंगा दे हंजर इसो के फिर आई मल्ले इन रगद हो कनीनन मल्ले इन आए हो कनीनन मल्ले इन लील हो कनीनन मल्ले इन अंगुल हो कनीन अश्वि बोब कस्ते तेनाते अंगुल मदा का रानो इन अंगुल हो आ दी हो किरित इसी सो दे अंगुल ओंगा ले फिर आई तो अयो दासी किरित इसी सो दे अंगुल ओरा फिर आई तो अयो दासी मल्ले अंगुल खी इंगा दे बि तमय के दारो गन दे दियो अंगुल तम उन अने बना सनाय बे तई वेति अदिए तोन बलिन इफिया दे दा इफिया दे सबी न ने अंगुल होय आव उन ओ धई इरे तेने मिशु शेबब तित कहोय बा फायद ने अत तो गिस संब तो इनेम ताल ते शबे बने उन ओ धई तो गया शेबब तित ते सोगा ने इदायत की केन ते सोगा ने इताकना कसो हो दायत की केन ओ धई आकना ए यदनोब ते सोगा नहीं मेल की बार उन दिया सोरी दबा तायरसी बाय उन बत्तो भली दिया अबू उधे कस्सा दा मररा ने इतबार हुआ वेर हुआ एप्तिक मुश्किल आती कई उन बत्तियो सब भी उम दुआ मशायख हुआ कस्सा है ताऊ मररा ने थी दाब इस अनोब ताहरई ना ना तो एनोब उन अने ना इप्तिक के अने वोंगिलावर वके हाय ना ओ तो ना तो अने अबरियत अम्बाराकना सूर्य दबाब इत सोगा नहीं हुए कावा नहीं
ja en tette sugani suri da va wake up kinke eno unane akte net tonati tette sugani er hena unun wena meltinit ke thai dia bu ti sugani itakna dait ki ke o dha erete ne bembare mishu shebtit umatuni daiwa digil tak nat va bare daini dis tak na de bare daini on u dhai kaste tette nate dai ti sugani dait ki ke an mala torau tu ton tona tu makte hai mini ka dait kittei on udhai ugarok shakuna ugarok shibibn wer are gana inde to dainai ogna mandi end the tuma ganatni adem ama lasid ibrin labit endor shakesen inde utto dainai te hai mini ka onkanao mankir to bedawi otak dae vario dae ka wer amiadi ujazai daraba ma amiadi unne e tim gorrena are tuna daina ogna mandi enda tuma ganat ne indio ut tuma te hai mini ka to tuna tuma dawil na etnio ko wasage na sage na etnio ko kasso tuma ama ak to ko onu dai tuma ge ke haru na to na tuma ke haru be tuna ti da onu da e ne mini ka ga tha ati tim shabi ba ga tha ati shambi ba adgirchi hadit ko no dai da tiwari aya on ibn adam allah karrama ba ko ka sukta aya ka disgwa deta.